0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
2: नेपाल भाषा को कार्यक्रम नेवा दपु।

Hello, Jodhulpa, Jodhulpa, Jodhulpa. Thile jazo neva dabo nentalosna dima chita dunga nisse hanuman dabo lasku sahi vadan ji Rajendra Dangolia. Thona pasad do pravidik drupa gwalin sandi gu ma dima thana Jaram ji. Athe jazo khada ho chigu tajlo ji. Chisaksha swastha o samrida jivan maya kani ma lopu ashanti suyuna jivan e maya ma nefu ka apu ka jivan neja phe ma. Thoye mantra thoye jazo pakhe ji nyavajana thoye jazo khada chigu tajlo ji. जिसमें दक्षिण का नाव चलोगे थी थी नखा सकाई जानकारी अरे नखा सकाई उद्देश्य नखा सकाई मशीन का तो जो कोई थी थी थना समसमे विषय पुस्तक के केंद्र जिया न्यायनिक को जाजा कर जिगो ताजला जी अरे तो जाजा तो ने फोन इन कथना न्याय चना अरे फोन बाकी ना चिपसना थना था गो नुआ कहाँ त्यादी पे सुना करंट इश्यू सुना समसमे विषय पुस्तक के चीन खाना जंगो बिक्री विसंगति तो जो कहे थे चिपसना फोन या ना था नुआ कहाँ त्यादी पे पांच तीन छह सात दिस सात नौ पांच तीन छह आठ जो दिन तो लाखे फोन इन दिशा था वो नुआ खान निर्धक का करना दिशा इन आप इन चला अलेट हमको ने ये ने अपनिया लस्ता ये को कभी इन तरह दिशा से तो ये जज़ब के न्याय ने दक्षिण नपा जी चीज़ को तो यंग थे ना था ना जी बजे आज जो पिंसा तो भाव दुग में सुलेन साकिया साधु अरे लेच ना मिवा चुसा करना दी स्वयंभू

हजुर बाजुर थना सुलिन सकिया छ जिसन हेन जो सब लेचिनामी थना जो सब लेचिनामी वेका स्विमरा साक्य आ जीवन जजपके थौ थना लाइव जजन हेन सङ छ फोन एन दिफै फोन ल्यागु निति ल्यादु 536-7249-536-8803 तो लेके फोन इन्छ रेडियो धा संसार 99.4 मेगाजिन निबरन न्यान्जो मुजाजो नेवा दबु दुने दोसी र नेवा दबु दुने जी शनिबार आइतबार निन्जो वेख सोथा या था खबर दुनका जजो न्यान दिफै पेदाइ दुगु जुने जी थौ जाजो छिगु तैलो जी विशेष ना थौ गने एने पनि न्यान्जो दु एने अबले जगे खने दैम लखे आजु ख मजबा लखे तो लखे बारे न छु छु जी जीवन दक कने जी विशेष कुमारी माया ख जतया मुख्यमा सुरक्षा नायक लखे अजौ अथे प्लाङ्गो बकया लिरङसक या छुसु ख नेनु खसा तस्क बल्लाम राचिसी प्रवृत्ति दोमा लखे आजु जिगो नेपाल मण्डलियासम्म तस्क बालाम ल्यासी मेजु नप मतिना तकेना मनिया रूपकया बुझ्या बुझ्या ग्वालिब्या थगु जीवन व्यतीत यान्चुङ्गु ख तर लखिया राचिसी व हिंसक प्रविधि पाखे आजित चियाचपी नगरवासी पिन्छ तान्त्रिक शक्ति छला नियन्त्रणेकया राजा या थया यङका मनोतेत दुःख कष्ट मभिको नेपाल मण्डलीया रक्ष यागो लोकहित या जग ज्या माघो बाचा लाका शान्त भैरव्या रूपे मजपालाके स्थापित यागो तैगो तापोडो अथ कुमारी माया ख जत्रा सुरु यागो न्य मजपालाखे आज आराध्य देवी कुमारी माया त सोचा चाहिला स्वस्ति प्रणामेन ता फुस्याया ताले प्याखा लुया ख जत्राय त सुरक्षा बिगु जेन यही थोक्ना मसिगदुमा लाखे आजु बचा गएको जानकारी दिया जज पखे जी न्याउने मेगु संगीत पखेन धन थिति मे थनाजी लिस्टिङ पखे जनाएको आज यहाँ फुनी यता त लुमका छुया दोगु अहिले हाला दोगु लैचनामी म सथना दु राम श्रेष्ठ थना वे कथौ गरे अमेरिका दि अमेरिका चुनाव थौया तना जजपके जिसना थना मे वेकना हलदीको मे तना निन्देन वेक यो मे थना नुगु मे कतो सलेस्ता के वेकना चुयादिगु आइत थमे पके हुने जुगल लंगुला बजाउ छैन ल्यु खा

अनुभवी ने मैं बाज मुझे मैं तो ना ची न्यानो आ ची न्याओ ने अब जो ना चिकनियो कुता चिकनियो तो ना छो जिता आ छो चूता तो न्याबले दिया चुन मा तो इनाब ऐसे तो मैं जज़ाब करना ची वो जो ना जो लिखना ची दो जो लिखना जी दो अबे ची जो लिखना भगवान दो भगवान ने कृपा दो महाभ चिता पिंगु सोचा है भी अतः वो कपनी वो प्रगति उन्नति या नियंति नेपले काम नहीं है सक्षम नेपले जय जीवन चिता पी मति देखनी हो तो ये मन तो सें तो ये ज़रूर पकने आ ना ची न्याओ ने तो ना तंचा है मति ना अदर ची कुंतल जी इन आप इंचना ऑप्शन आ तो जार लस गाये बले गुलियों ने तो तो ये बीबले अल मेरो ज्यादा नहीं तो ना चकलाई जिया उगता तो नहीं चिकुंता आज ये तो ये इनाब ऐसे तो ना तांचा है मती ना तो ये इनाब इन चला मेना थोक तो ले आयो के तो जो सब ले कथन दी रखी मार्जन अल राज सहमी वो मिर्नल मिर्नल मांडर वो कभी नहीं सा मंगा सा